0: पौड़ी बड़ी वड़ा पार तेरा मर्तबा रंग परंग नेक ना जापन करतबा जिया अंदर जियो सब किछ जान ला सब के तेरे वास तेरा घर भला तेरा घर आनंद वधाए तुद घर माण महत्ता तेज अपना आप जार सर्व कला परपोर दिस है जत कता नानक दासन दास तुद आ गए बिनवता
1: श्लोक पमनी गुरु पानी पिता माता तरत महत दिसे रात दुई दाई दाया
0: खेले सगले जगत
1: चंगियां या बुरियां या वाच

आया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले किती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

के नेड़े दूर जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल जिनी नाम ते आया

0: रंग बिरंगे नेक न जापन करतबा, जिया अंदर जियो सब किस जान ला, सब किस तेरे वस तेरा कर पला, तेरे कारे आनंद वधाई तुद कर, माण महत्ता तेज अपना आप जर, सर्ब कला भरपूर दिस जत कथा, नानक दासन दास तुद आगे बिनवता, नानक दासन दास तुद आगे बिनवता।
1: ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਤੁਮ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰੇ

गए मसक काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल, जिनी नाम ते आया गए मसक काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

जाने हर गुण सद ही आख बखाने, जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर न कोए। तू कर कर वेखह जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला, तित सर वरड़ पहिले निवासा, पानी पावक तन है किया। पंकज मोह पग नहीं चले, हम देखा तह डूबी अले। मन एक ना चेत समूढ़ मना, हर विसरत तेरे गुण गले आ रहा। ना हो जति सती नहीं पढ़िया, मूर्ख मुगधा जन्म भया। प्रणवत नानक तिन की सरणा, जिन तू नाही विसरिया। आसा महला पंजवा, भई प्राप्त मानुख दे होरिया, गोबिंद मिलन की यह तेरी बरिया। अवर काज तेरा कतै ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंजाम लाग पवजल तरन कै, जन्म मृथा जात रंग माया कै रहो। जप तप संयम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच करमा, शरण परे की राखो शरमा। जप तप संयम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच करमा, शरण परे की राखो शरमा। एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबयो बाच बेनती चाओ पई, हमरी करो हाथ दय रक्षा, पूरन होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सबय तुम कावहो, आप हाथ दय मोहे बचावहो। सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सबय करतारा। मोर अच्छा निज कर दय करियै, सब बैरन कौ आज संगरियै। पूरन होए हमारी आसा, तोर भजन की रहे प्यासा। तुम हे शाड़ कोई अवर ना त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जू करी अहो रक्षा। राख लिहो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बवतरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमासा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बन

आपे तरस पयो तरस पया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिले नानक नाम मिले ता जीवन तन मन थीवै हरे आ तरस पया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिले आ नानक नाम मिले ता जीवन तन मन थीवै हरे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

हम आव गुण परे एक गुण नाही, अमृत षाड बिख बिख खाई। माया मोह परम पै पूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। सो कहो टल गुर सेविए, अहनस सहज सुभाय। दर्शन परसे गुरु के, जन्म मरण दुख जाय। होवे सिफत खसाम दी, नूर अरसों कुरसों चटी। तुद डिठे सचे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी। सजन सचा पातशाह, सिर सांदे जिस पास बैठे आ सोही है। सवना दा विसाहु, सजन सचा पातशाह, सिर सांदे।

सुख मांगे, मोक कर संतन की तूर। अंतर जामी पुरख बिदाते, शरदा मन की पूर। नानक दास इह सुख मांगे, मोक कर।

0: संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दू गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो, सर्व सुख हर नाम वडाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई। श्लोक
1: पावन गुरु पाणी पिता माता धरत महत, दिवस रात दोए दाई दाया, खेल सगल जगत।

गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुटी ना। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

0: सतगुरु जप रखन कर प्रगटक सुनाया सतगुरु मिले सुपाया जिन के हृदय सतगुरु साया
1: जिन सच्चो सच बुझाया जिन सच्चो सच बुझाया।

0: अंड जर उपजा खाणी सेत जा सोमत जाने नानका सरा मेरा जनता हा नानक जंतु पाए कै सुमाले सबना हा जिन करते करना किया चिंता बेकरनीता सो करता चिंता करे जिन पाया जग तिस जुआरी स्वास्थ्य तिस तबानु भग नानक सचे नाम बिन क्या टिका क्या तक महला पहला
1: लख निकियां चंगियां लख पुन्ना प्रवान लख तप ऊपर तीर्थां सहजुग बेबाण लख सूरतन संग्राम रण मैं छुटै प्राण लख सुरति लह गयान ते हन पढ़िया पाठ प्राण जिन

0: पढ़ पढ़ बेड़ी पाइए पढ़ पढ़ गदिए खाद, पढ़ पढ़ बेड़ी पाइए पढ़ पढ़ गदिए खाद, पढ़ी जिते वर्ष पढ़ पढ़िए जिते मास, पढ़ी जिते आरजा पढ़ी जिते सास, नानक लेके एक गल और हमें चकना चाक महला पहला।
1: लिख लिख पढ़िया तेता कड़िया, बहुत तीर्थ भव्या ते तुलव्या, बहुत भे किया देह दुख दिया, सोह बेजिया अपना किया, आनना खाया साध गवाया, बहुत दुख पाया दूजा पाया, वस्त्र ना पहरे एहनस कहरे, मोहन भगूता क्यों जागे गुरबिन सूता, पागो पिताना अपना किया कमाना, अलमल खाई श्री शाही पाई, मूर्ख अंधा पत गवाई, विण ना वकिस्ताई ना पाई, रह बिबाणी मड़ी मसाणी, आंदर जान फिर पिछताणी, सतगुर भेटे सो सुपाए, हर का नाम मन वसाए, नान

0: बियो बीज पत लै गए अब क्यों गवे दाल, जे कोहे ता गवे रुतियो रुत होए, नानक पाहे बारा खोरे रंग ना सोए, पैबच कुंभ चढ़ाई है चरम पाओ तन होए, नानक भगती जे रपै कूड़े सोए ना कोई महला पहला।
1: लब पाव दोए राजा मेहता कूड़ हुआ सिकदार, काम ने सर पुछिए बह बह करे विचार, अंधी रैयत ज्ञान विहोणी भाई परे मुरदार, ज्ञानी नचे बाजे बावें रूप करें सिंगार, उच्चे कुकें वादा जगावें जोदा का विचार, मूर्ख पंडित हिक बुद्ध संज्ञा करे प्यार, धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मुख द्वार, जति सदावें जुगत न जाने छड़ बह कर बार, सब को पूरा आपे होवे कट ना कोई आखे, पत परवाना पिछे पाईए ता नानक तू।

0: कहो नानक ते किया बाता, जो किछ करना सो कर हया महला दूजा।
1: जोग शब्दं ज्ञान शब्दं बे शब्द ब्राह्मण है, खत्री शब्दं सूर शब्दं सूदर्शन प्राकृत है, सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पेओ, नानक ताका दास है सो निरंजन देव।

राम नाम परम ताम शुद्ध बुद्ध निरीकार बेसमार सरबर को कहे जियो सुथर चित भगत हित पेख तरयो हर नाकस हरयो नख बिदार जियो शंख चक्र गदा पदम आपे आप कियो शदम अपरंपर पार ब्रह्म रखे कौन ताहे जियो सत सा श्री निवास आदि पुरख सदा।